दोस्तों साथियों को स्वागत करते हैं चलता फीजी रेडियो इस ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ प्रोग्रामेट विनेश। आज हमेशा की तरह एक्चुअली साहिल हमारे साथ पैनलिंग में नहीं है, तो हम उसको भी याद कर लेते हैं अपने इस शो में। और इस शो में कुछ गेस्ट्स रहेंगे जो भी आ रहे हैं, कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे, हम उससे बात करते चलेंगे। लेकिन कुछ गीत है आज जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा वही होता है जब हमारे पास गेस्ट वगैरह होते हैं तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम होता है ये सब गीत सुनाने के लिए। तो चलो हम गीत से शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में हम हमेशा की तरह जो बात करते रहेंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास जो पहला गीत कौन सा है।

0: Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Climb Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Dini from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.
1: जी हाँ दोस्तों, सती हितल सा फिजी रेडियो में हूँ, प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। और आशा है कि जो गीत अभी आपने सुना पसंद आया हुआ होगा, और ये गीत से आप अनुमान लगा सकते हो कि आज हमारा जो टॉपिक क्या होगा। जो गेस्ट हमारे पास अभी आने वाले हैं, हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। जब आएंगे तब हम वो जो इंटरव्यू आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट गीत आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा करके गेस्ट होते हैं तब हम बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो संगीत होता है वो कम हो जाता है। और अभी जो गीत अभी सुन काफी बढ़िया गाना है, अच्छा लग रहा है। और काफी जगह जब पूजा पाठ रहता था वो ये गीत हम सुनते भी हैं, और मेरे ख्याल से ये मूवी सरगम का होगा। चलो हम नेक्स्ट गीत आप तक प्रस्तुत करते हैं, और जैसे हमारे गेस्ट हमारे साथ आ जाते हैं देन वी विल ब्रिंग देम लाइव एज वेल।

जी हाँ दोस्तों, सती आशा है कि गीत आपको पसंद आया होगा। काफ़ी जो इंटेंस गीत था गणपति को लेकर, और ये मूवी अग्निपथ का था जिसमें प्रियंका चोपड़ा ऋतिक रोशन ने काम किया था। और जब भी जो गणपति चतुर्थी होती है ये गीत आप उस वक्त ज़रूर सुनते होंगे। तो चलो ये गीत आशा है पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे और भी इसी तरह गीत आप तक पहुँचाने के लिए। और ये भी बतला दें कि हमारे कुछ गेस्ट हैं पहुंच रहे स्टूडियो में, और शायद थोड़े देर में हम उनको फ्रिक्वेंसी पे भी लाएंगे और देखेंगे। और अगर इसका जो फेसबुक लाइव वाला जो वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप जाकर जलसाफी जी रेडियो पेज पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो नेक्स्ट सॉन्ग ये सुनाते हैं।

जी हाँ, शाही गीत आपको पसंद आया हुआ होगा, राधा कैसे ना जले। और ये जो मूवी आपको याद होगा लगान, उसकी जो ये गीत हम सुन रहे थे जिसमें आमिर खान ने बहुत

गीत जो अच्छी तरह जो एक्ट किया था, काफ़ी बढ़िया जो मूवी था, हिट भी हुआ था। और ये गीत बहुत खूबसूरती से उदित जी और आशा भोसले ने अदा किया था। और चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको फिर याद दिला दें कि हमारे जो गेस्ट है वो आ रहे हैं, और गीत से पहले हम अपने जो स्पॉन्सर्स का छोटा सा एड बजाएंगे और उसके बाद जो आप गीत सुनोगे, और जैसे हमारे जो गेस्ट हमारे साथ आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उससे भी हम बात करते चलेंगे। और विषय यही रहेगा, हम धर्म की ही बात करेंगे ज़्यादा करके। तो जैसे वो आ जाते हैं तो हम उससे जो बातचीत करेंगे, तो चलो हम एड आपको सुनाते हैं, उसके बाद में वो जो गीत आप सुनोगे। Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govai's Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Denny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements.

0: आती है जलसा फिजी रेडियो और आशा ये गीत आपको पसंद आया हुआ होगा. चलो हम आप तक नेक्स्ट सॉन्ग हम प्ले करते हैं. और जैसे हमने बोला था हमारे जो गेस्ट है वो लोग हमारे जो स्टूडियो में पधार चुके हैं उसे हम इस गीत के बाद में जो बात करेंगे. और चलो देखते हैं कौन सा नेक्स्ट सॉन्ग है. और हम इस सॉन्ग के बाद में वी विल ब्रिंग आवर गेस्ट ऑन लाइव, उसे हम बातचीत करते चलेंगे. और जैसे हमने शुरू में बोला था जो टॉपिक है जिस विषय पे आज हम बात करने वाले, के लिए हमारा धर्म ही है तो हम धर्म और रामायण विषय पे बात करने वाले हैं. तो चलो हम गीत सुनते हैं उसके बाद में फिर और हम बात करेंगे.
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है.

0: जी हाँ दोस्तों, साथी है चलता फिजी रेडियो में प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश है। और एक जो गीत हम आज तक आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, ये कुछ धर्म से जो जुड़ा गीत था। और रीज़न यही था कि आज हमारा शीर्षक यानी कि टॉपिक यही होगा, हम धर्म के विषय में बात करेंगे, रामायण के विषय में बात करेंगे। और जैसे हमने बोला था, हमारे जो गेस्ट है वो आ चुके हैं, सो देर ऑल हियर ऑल सीटेड। तो हम स्वागत करना चाहेंगे बलजिंदर जी को, शुक्रिया आने के लिए। पहली बार है कि आप हमारे स्टूडियो आए हुए हैं। और विकासनी जी जो अश्विन महाराज की धर्मपत्नी है, वो भी हमारे साथ आ चुकी है। और इससे मुलाकात तो होते रहती है कहीं कहीं पे इवेंट्स वगैरह में, लेकिन आज पहली मर्तबा आप आई है, थैंक यू सो मच। और साथ साथ में अमित जी, नो स्ट्रेंजर टू प्लेन्स मीडिया, उसका तो अपना ही शो चल रहा है। तो और काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, कभी हम कहते थे कि वो हमारे स्टूडियो में आएंगे और हम कहते थे कि हम उसके प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन आई थिंक बाजी हमने मार दिया, पहले हमारे स्टूडियो में आए हुए। तो थैंक यू सो मच। और हमारा भाग्य होता है या तो फिर कोई विषय होता है या ऐसा जो होनी, हम कहते हैं ना जो होनी का होता हो ही जाता, तो आज ऐसा कुछ होनी को होने का था इसलिए हो गया। और जो लोग हमारे साथ अभी जलसा फिजी रेडियो फेसबुक पेज पे जुड़े, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और ये जो हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं, इसे हम बात आज जो करते चलेंगे, और इनका एक इवेंट आ रहा है, तो इसने बोला चलो हम चर्चा करते हैं रेडियो में, ताकि जो ये कार्य कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, ये आप तक पहुंचे। और स्पेशली ये जो इसका जो कार्य है, जो पैशन है, इट इज़ टू डू विद किड्स। जैसे हमारा अक्सर होता है कि हम आए हुए हों यहाँ से, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम फिजी से आए हैं, काफ़ी लोग जो ये भारत से आते हैं और कहीं और से आते हैं, अपने कल्चर जो हम यहाँ आकर जो फॉरन कंट्री में हम लाइफ रखना चाहते हैं। और काफ़ी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अब तो क्राइस्टचर्च में काफ़ी मंदिर भी हो चुकी है और जो काफी ग्रुप्स है। और बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज जो किड्स है यहाँ के ग्रोन अप होते हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, तो हम एज पेरेंट्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि किस तरह हम जो अपना कल्चर अलाइव रखें। तो ये जो छोटे छोटे जो ग्रुप्स है जो अपना जो काम कर रहे थे, तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगता है। तो हम शुरू करते हैं बलजिंदर जी। तो बलजिंदर जी, हम आप पर छोड़ते हैं, आप अपना जो परिचय हमें दीजिए, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे।
1: थैंक यू जी फॉर द इन्विटेशन हियर, आपने मेरे को मौका दिया। जय श्री सीताराम। मैं बलजिंदर हूँ और मैं भल भक्त ग्रुप के बिहाफ से आप सभी को इन्विटेशन दे रही हूँ। जो 4 जुलाई को ये प्रोग्राम होने वाला है, ये सब प्रोग्राम बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चे लैंग्वेज और एक दूसरे से मिक्सअप होना सीखते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी रूट्स को अलाइव रखें। तो ये करवा रहे हैं विक्की जी और उनके हस्बैंड अश्विन जी, और इधर अमित जी बैठे हैं, सब इसके हम, मैं भी उनकी मेंबर हूँ। तो सभी लोग प्लीज आए, और जो भी हेल्प करना चाहते हैं इस ग्रुप में वो हेल्प भी करें, और जो बच्चों को लेके आना चाहते हैं, बच्चों को आगे कुछ और सिखाना चाहते हैं, वो भी आए। ये सब स्टोरी टेलिंग और सिंगिंग जो भी बच्चे करना चाहते हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन लोगों को, तो और सबसे करवाया जाता है, सबको मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच। और हम शुक्रिया करना चाहेंगे मोनिका जी का, जो हमारे आज वीडियो संभाल रही है, क्योंकि जब हम फेसबुक लाइव पे। और विकासनी जी, आप बताइए कि ये जो प्रोग्राम आपने बोला है आप रेगुलरली करते हो, तो क्या महीने में एक बार होता है या हफ्ते में होता है?
2: महीने में एक बार होता है। हम लोग पेरेंट्स से भी कंसीडर करते हैं किस टाइम यू नो अवेलेबल रहते हैं, बिकॉज पेरेंट्स काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ में। ये सैटरडे को रोज होता है, और सभी लोग मिल के और जोड़ के हम लोग, ये हनुमान चालीसा रहता है, होता है हमारे घर पे, और काफ़ी बच्चे जुड़ गए हैं। हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि बच्चों को लेके आगे बढ़ना है और हनुमान चालीसा सीख ले।
0: धन्यवाद। तो काफ़ी अच्छी कार्य आप कर रहे हो, क्योंकि

0: हमारा पास वही होता है कि हम जैसे यहाँ पे एक चीज यही होता है कि किसी के पास समय नहीं होता है, हम हरदम बिजी भाग दौड़ में लगे रहते हैं काम पे, फिर ओवर टाइम्स काम भी होता है, हम घर पे आते हैं। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो काफी ठंड हो चुकी है, विंटर है, यानी कि शॉर्ट डेज, जल्दी से अंधेरा हो जाता है, एंड उसके कारण भी हमारे पास समय कम होता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद, और आपके खुद बच्चे हैं, लेकिन फिर भी आप वक्त निकाल के ऐसा जो कार्य करते हो, हम कहेंगे बहुत अच्छे काम है और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और हम यही कोशिश करेंगे जो चर्चा यानी कि इन्फॉर्मेशन बाहर तक पहुंचा, ताकि जो और भी पेरेंट्स है, जो बच्चे है, वो ये लाभ उठा सके। तो चलो हम बढ़ते हैं अमित की ओर। तो अमित, आप बताइए कि आप का इस जो ग्रुप है, इसमें आपका क्या किरदार है?
1: सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को जय श्री सीताराम और पवनसुत हनुमान की जय। जैसे हम फंक्शन के बारे में बलजिंदर जी ने बोला कि फंक्शन होने वाला है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ये शुरू कैसे हुआ, और इसका जो प्रोग्राम, ये जो हमारा एफर्ट मैं कहता हूँ, ये शुरू हुआ है लोटस जी की वजह से, लोटस दीदी कि उन्होंने ऐसे सोचा कि देखिए हम परदेश में हैं, हम भारतीय हैं, हम फिजियन हैं, लेकिन हम भारतीय अपने दिल से हैं, तो हमको इस देश में अपना कल्चर क्यों नहीं हम फॉलो कर सकते। तो उनको लगा कि हनुमान चालीसा जो है सभी बच्चों को आनी चाहिए, और हनुमान चालीसा के पठन के जो लाभ है कि आप सिर्फ हनुमान चालीसा का पठन ही नहीं करते, आपको जब आप उनको बाहर करते हो तो आपका जो फोकस बढ़ता है उसकी तरफ से, आप एक लय में बोलना भी सीख जाते हो, आप संगीत भी उसमें सीखते हो। उसके अलावा हम बच्चों को जो हनुमान जी के कीर्तन हैं वो भी हम सिखाते हैं, और ये सब लोटस दीदी करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम बच्चों से एक सेंट भी नहीं लेते हैं, हम इनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और इस मंथली फंक्शन में शामिल हों। अभी 4th of July की बात ऐसे है कि जैसे बागेश्वर धाम सरकार की बर्थडे है, दुनिया 4th of July को किसी और मायने में जानती है, लेकिन हमारे लिए तो हिंदुओं के तो वही सबसे बड़ा एक फेस्टिवल है। इसके लिए फिर हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और उसमें हम बच्चों की जो आज तक की एफर्ट हुई है कि उन्होंने किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ी है, उन्होंने कितने कीर्तन अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हैं, जिसकी झलक मैं बताऊं आपको, आप देखोगे अभी थोड़ी देर में कि हमारे जो बच्चे प्रिपेयर किए हैं लोटस दीदी की एफर्ट की वजह से, उन्हें कितनी अच्छी तरह से वो कीर्तन गाते हैं हनुमान जी का, वो होगा। हम हमेशा एक क्विज करते हैं, बच्चों को कथा सुनाते हैं, या बच्चे भी, हम बच्चों को बोलते कि आप एक कथा प्रिपेयर करके आइए हनुमान जी की और हमको सुनाइए, फिर उस पर हम एक क्विज करते हैं बच्चों को। जैसे बच्चों को जो नॉलेज नहीं थी राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, वो उनको भी हो गई है, और क्विज होगा। उसके बाद ऑब्वियसली 4th of July है, बर्थडे का सेलिब्रेशन है, तो अवार्ड्स तो होंगे ही होंगे। तो इट्स एन इवेंट दैट एवरीबडी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, एस्पेशली हिंदू चिल्ड्रन, एंड दे आर ऑल वेलकम, एंड आई रियली वेलकम यू ऑल टू कम एंड जॉइन एंड सेलिब्रेट दिस फंक्शन।
0: थैंक यू सो मच अमित, ये जो समाचार देने के लिए। हम क्या करेंगे लोटस जी, आप हमें जो पोस्टर दे देना, तो हम क्या करेंगे अपने जो फेसबुक पोस्ट पे भी डाल देंगे, बिकॉज आई नो जब इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं, मे बी पीपल आर ड्राइविंग, या आप कुछ घर पे काम भी कर रहे होंगे, मे बी आप नोट्स नहीं, आई मीन हमारे भी वही होता है कि वी कांट रियली रिमेम्बर, ज़्यादा करके वही हो रहा है कि हम फेसबुक पोस्ट पे देख लेते हैं, उसके बाद में हम चाहे उसको स्नैपशॉट कर लेते हैं या तो फिर हम सेव कर लेते हैं फोटो, ताकि हमें याद रहे कि कब हो रहा है। तो ये 4th July, 4th July एक्चुअली काफ़ी बिजी रोज है, बहुत इवेंट्स हो रहा है, तो आप प्लीज नोट कर ले समय वगैरह भी कि कब आपको जाना है, तब आप जा सकते हो, और जो वेन्यू वगैरह सब उसमें लिखा रहेगा पोस्टर में, तो हम आप तक पहुंचा देंगे। और आज इस हमारे पास दो गेस्ट और भी है जो वेट करें, तो हम फिनिश करेंगे आप तीनों से, फिर उसके बाद में हम उन दोनों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे हमारे पास समय का वही होता है कि समय हर वक्त कमी होता है और भागते रहता है, और जब समय और धर्म की बात आती है, यानी स्पेशली हिंदुइज्म, तो हमारे पास भी बहुत जो स्क्रिप्चर्स बहुत ज्यादा होती है और वक्त हर वक्त कम ही होता है। अगर आप रामायण वगैरह में जाओगे तो आपने देखोगे कि 2 या 3 दोहा से ज्यादा नहीं होता, उसके बाद में फिर कट ऑफ होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, टाइम काफी हो जाता है, और यहाँ पे समय के जो आधार पे ही चलना पड़ता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, अंधेरा हो जाता है, फिर बच्चों को सोना पड़ता है, नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना पड़ता है, तो इसलिए यू हैव टू फाइंड स्पेस, आपको अलग से भी टाइम निकाल के ले जाना चाहिए बच्चों के लिए, सो दैट दे आर वेस्ट विद देयर कल्चर। आई नो अभी मूवीज वगैरह होता है, देयर सो मेनी थिंग्स फॉर किड्स ऑन इंटरनेट, लेकिन फिर भी आई थिंक जो प्रैक्टिकली या फिजिकली आप जाते हो, उसका जो वो जिस तरह लोग नॉलेज गेन करेंगे, उसका कुछ अलग ही जो
1: डेफिनेटली विनेश जी, और इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसे नहीं कि समय होता नहीं है, इट्स मैटर ऑफ आई थिंक टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो एंड ऑल्सो

0: प्रायोरिटीज कि आपको मैक्सिमम एक घंटा ही तो लगता है और इसमें आप इतना सीखते हो. और हम ऐसे नहीं कि हनुमान चालीसा का रटन ही पढ़ाते हैं, इसकी मीनिंग्स क्या है एक एक लाइन की, वो भी हमारा प्रयास है कि बच्चे सीखे वो, कि हम गाते क्यों है वो और इसका एक एक शब्द का मतलब क्या है. तो हमारी वही एफर्ट रहेगी कि उनको ना सिर्फ वो रटन आए हनुमान चालीसा का, लेकिन उनको उसका मतलब भी समझे वो.
1: जी हाँ बिल्कुल. और यहीं पे आता है समय, क्योंकि अगर आपको मतलब भी सीखना और एक एक अगर आप यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ये अगर आप रामायण की बात करें तो एक अक्षर में मतलब रहता है और जिस तरह लिखा हुआ है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि रा और मा का अक्षर जगह जगह मिले, तो देयर सो मच टू लर्न और इसके लिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. तो चलो बलजिंदर, आपसे हम बात करते हैं कि आपका नाम बलजिंदर, इस आप पंजाब के हो?
2: हाँ जी पंजाब.
1: ओके ठीक है. तो आप कितने दिन हुए आप न्यूजीलैंड आए हुए?
2: हमें तो हो गए
1: 20 साल.
2: नहीं,
1: मोर देन 20 इयर्स. जी तो ओके, तो पंजाब से आप डायरेक्टली यहीं आए न्यूजीलैंड?
2: न्यूजीलैंड आए ऑकलैंड फर्स्ट. हम स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम ऑकलैंड एंड गए हम डनीडन रखे
1: आए. ओके डनीडन भी गए थे? जी हां जी हां. तो दैट मींस आपने जो न्यूजीलैंड का काफी आपका नॉलेज है, क्योंकि ऑकलैंड इज वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग है. जैसे मेला मंदिर और गुरुद्वारा सभी कुछ होता है, ज्यादा है. और क्राइस्टचर्च में हम अब तो हम कम नहीं बोलेंगे, पहले हाँ कम था, कुछ थे, लेकिन अभी काफी हो चुका है. तो आपको भी बदलाव देखने को मिला होगा?
2: हाँ हाँ बिल्कुल.
1: जी हाँ,
2: जब हम आए तो अर्थक्वेक के बाद हम 2015 में इधर मूव हुए क्राइस्टचर्च में. तब गुरुद्वारा भी एक कम्युनिटी हॉल में होता था, बिल्डिंग रेडी नहीं थी.
1: अभी तक दो हो गया होगा.
0: माय ओपिनियन विदेश जी, जैसे बदलाव जो होता है, जब हम कहते हैं कि बदलाव आना चाहिए, बट जैसे विकी दीदी ने लोटस दीदी ने, मतलब इनका नाम विकी दीदी भी है, तो उन्होंने कैसे, शी टुक एन इनिशिएटिव. अनलेस यू टेक एन इनिशिएटिव, चेंज डजंट हैपन. शी इज टेकन इनिशिएटिव कि ना, आई वांट टू मेक चिल्ड्रंस फ्यूचर अ बिट बेटर सो दैट बाय दिस सत्संग. तो इस तरह से एक इनिशिएटिव लेना चाहिए. जैसे आई थिंक आई रियली थैंक लोटस दीदी कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है. तो जैसे आपने बोला कि ओवर द इयर्स क्राइस्टचर्च में बदलाव आया है, एंड इट हैज कम बिकॉज ऑफ पीपल लाइक योरसेल्फ विकी दीदी.
1: जी और विकासनी जी या लोटस जो भी आपका जो नाम है, ज्यादा लोग एनो लोटस जानते हैं, मैं आपको विकासनी के नाम पे जाता
3: हूं. नाम से मुझे पुकारते हैं, बट
1: आप वही हो एक यू.
0: राम तेरे कितने नाम, लोटस दे दी आपके कितने नाम.
3: मैं पीजी हूं, बट मेरा भी काफी दिन हो गया इधर, नियरली 20 इयर्स. बट मैंने जो डिफरेंस देखा है वहाँ का यहाँ का, तो मैं सोचा कि बच्चे छूट जाएंगे. हम लोग तो सीख लिए बहुत कुछ, अब बच्चे रह जाएंगे, तो फिर मुझे उनका चिंता था ना कि कितना बदलाव हो रहा है. तो वही है मेरा प्लान है कि बच्चों को मैं आगे लेके बढ़ूं, किसी तरह सभी को यह शिक्षा दूं कि हनुमान जी के हमारी जिंदगी में कितना महत्व है. और चालीसा इज नॉट ओनली वर्ड्स, इट्स लाइक एंटायर रामायण का भी सब आता हूँ. तो बच्चे जब गाते हैं सोते समय, बैठते समय, पढ़ने के लिए, तो वो कितना हेल्प होता है उनके.
1: जी हाँ बिल्कुल. तो वैसे तो हम अब तीनों से और भी बात करना चाहेंगे, लेकिन वक्त हमारे पास कम ही है. तो हमारे पास दो गेस्ट और भी है, तो आप उन तीनों में से दो जो कोई दो सॉफ करना चाहते हो, बिल्कुल तब तक हम बात करते रहे. और जैसे हमने बोला है कि हम बात कर रहे थे रामायण को, आप सॉफ करते रहो ताकि समय ना हो. तो कौन रुक रहा है तीनों में से? जी हाँ, जिसे आप देख रहे हो, हम यहाँ बात कर रहे हैं जो रामायण पाठ हो रहे बच्चों के लिए काफी है, जो लोटस जी और उसके जो हस्बैंड अश्विन महाराज कर रहे हैं अपने घर से. तो अगर आपको जाना है, कॉन्टेक्ट वगैरह हमारे फेसबुक पेज पे जो मिलेगा आप देख सकते हो. तो बलजिंदर, ये आपका पोता होगा?
2: विकी जी का बेटा है.
1: विकी जी की?
2: हाँ
1: जी.
2: तो मेरे पोते दोते की तरह ही है.
1: जी हाँ
2: बिल्कुल सेम.
1: ठीक है, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए यहाँ पे.
4: थैंक यू.
1: ठीक है, तो मुझे क्या और भी कोई बात करने वाला है? एक्चुअली आप किसी को सब करना पड़ेगा. जी हाँ, तो चलो हम शुरू हो जाते हैं. आप अपना परिचय दीजिए.
4: मेरा नाम विनोद गुप्ता है और मैं लोटस जी के साथ में जब से ग्रुप बनाया और उससे पहले से जुड़ा हूँ. लोटस जी काफ़ी धार्मिक है
1: जी,
4: और एक्चुअली जो भारतीय संस्कृति है वो काफ़ी प्राचीन और समृद्ध है. और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हम अपनी जड़ों से लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो जड़ हम भारत से या फिजी से लेके आए हैं उनको ये चीज़ें आगे समझनी है. और हनुमान चालीसा ना सिर्फ एक वीर हनुमान

0: या एक बल का ये द्योतक है, बट ये आल्सो एक्चुअली हमको सिखाता है कि अगर आप में बल है तो बुद्धि का भी प्रयोग करो, और बुद्धि के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करो, और इस बल बुद्धि दोनों को सेवा में लगाओ। जैसे हनुमान जी ने राम जी की सेवा में लगाया, या ऋषि मुनियों की सेवा में लगाया। तो ये चीजें अहिंसा को भी सिखाती, नॉन वायलेंस भी सिखाती हैं, और आपके अंदर अगर बहुत सारा बल है, आपके पास शक्ति है, तो शक्ति को कैसे यूज करना, तो ये एक सुपर पावर की तरह हम बच्चों में दे रहे हैं ताकि ये लोग सीखें और आगे जाएं। और लोटस जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू
1: जी
0: किया है,
1: डेफिनेटली जी
0: इतना
1: जरूर
0: अच्छा ग्रुप शुरू किया।
1: जी बिल्कुल। और बच्चों के लिए जब कर रहे हैं, और जैसे हमने शुरू में बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने जो विषय लाया है संस्कृत, उस पर भी हम अगर वक्त लगा तो थोड़ा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो और एक गेस्ट जुड़ चुकी है, अगर आप अपना परिचय देना चाहोगे।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरा नाम श्वेता है और मैं भी लोटस दीदी के साथ वन एंड हाफ मंथ से जुड़ी हूँ। बेसिकली मेरे को भी बस यही है कि बच्चे के साथ, मुझे अपने मेरे बच्चे को हनुमान जी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पे हनुमान चालीसा मतलब क्लासेस होती हैं चालीसा, तो मेरे बेटे को मैं वहाँ लेके गई, तो हम ऐसे कनेक्ट हुए। तो जिन पेरेंट्स को है कि वो अपने बच्चों को अपने कल्चर के साथ जोड़ना चाहते हैं, और क्योंकि बच्चा बच्चे के साथ ही जल्दी सीखते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्लासेस होती हैं, चालीसा होता है, स्टोरी होता है, उसमें छोटे से हम क्विज रखते हैं ताकि बच्चा और सीखे, और भजन भी हम करते हैं। तो बस यही है कि हम अपने सनातन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत बिजी हैं, तो उनको ये जो सैटरडे वाला टाइम होता है 1 मंथ में, जो हमारी क्लास होती है, और जो ये हमारा बाल भक्त ग्रुप है, और जो 4 जुलाई को हमारी ये होने वाला है, तो उसमें सब आकर के पेरेंट्स आकर के और मतलब इंक्लूड हुए, अपने बच्चों को लेके आए, तो वो उन्हें भी पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो भी आगे फिर उनको भी एनकरेज करें।
1: जी बिल्कुल। और विनोद जी, जैसे हम बात करते हैं जो हमारा भाषा है संस्कृत, हमारी भाषा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी भाषा तो हिंदी हो गया है, क्योंकि संस्कृत अब गुप्त हो गया है। तो क्या हुआ कि वक्त के साथ में वो खत्म हो गया ना, एक्सटिंक्ट हो गया है, जैसे काफ़ी कुछ एक्सटिंक्ट होते जा रहा है, और काफ़ी जो हमारे वैल्यूज थे वो भी अब खत्म हो रहा है। तो अगर हम इसको पकड़ के नहीं रखेंगे, अगर आप जैसे लोग या लोटस जी की तरह अगर लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो द रिस्क इसकी ये सब भी हम लूज कर देंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि वी आर हैंगिंग ऑन टू इट, और हम कोशिश करते हैं। और वैसे भी हम इंडिया में नहीं है, फिजी में नहीं, बट हम बाहर है, बाहर और कई देश में हैं, लेकिन यहाँ भी हमने उसको पकड़ जमाए रखा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, बड़ी बात है। और अभी तो अब सोशल मीडिया में हम काफ़ी कुछ देख सकते हैं, और ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरह कुछ कुछ चीज़ जो लिखी थी हमारे ग्रंथ में, आज लोग वही इस्तेमाल
0: सत्य
1: कर रहे
0: सत्य
1: हैं। जी
0: साबित हो
1: हाँ,
0: रही है,
1: और हमें
0: बिल्कुल।
1: पता ही नहीं था कि हमारे धर्म में, बिकॉज अनलेस वी नो वी डोंट नो, तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन बच्चों को ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब बात आती है हमारे जो हनुमान बाबा की, तो कहा जाता है कि वो एक्चुअली धरती पे है, जब उसको जाने का समय है, तो उसने बोला नहीं, वो यहीं रहेगा, बिकॉज उसको लगा कि यहाँ पे ज़्यादा राम भक्ति चलेगी। और सही भी हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारे फिजी में तो बहुत सारी मंडलीज हैं, और यहाँ होते रहता है, क्राइस्टचर्च में होता है, ऑकलैंड या कहीं भी देख लो तो चलते रहता है। और जो हमारे दोस्त हैं इंडिया से आते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं जब उसको पता चलता है कि छोटे से जो दीप है फिजी, लेकिन हमने उस अपना जो पकड़ है कल्चर का जमाए रखा। तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास कुछ समय है, आई थिंक जो बच्चे हैं वो लोग गाना कुछ गाना था, आई थिंक बच्ची बाहर चली गई है। नाउ यू कैन टेक सीट, वी जस्ट नीड वन पर्सन टू रिलीफ, ताकि वो बच्ची आ जाए, एक बैठ सकता है, एंड देन हम सुनते हैं कि
2: नो वी कैन सिंग व्हिच आर यू सिंगिंग
1: ओके ठीक ठीक है, तो आप लोग गा सकते हो।
2: स्टार्ट
1: हाँ हाँ यू कैन स्टार्ट, शुरू जाओ।
3: जय श्री राम, जय हनुमान।

0: श्री राम जय हनुमान।
1: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो अब लग रहा है कि आपका जो ग्रुप जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। काफी अच्छा लगा सुनने।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो अभी कितने बच्चे हैं वहाँ पे?
3: अभी ग्रुप शुरू ही हुआ है, नया है। और इस जो दो तीन पिछले दो महीने में जो हमको रिस्पांस मिला है, उस रिस्पांस को हम देखते हुए हमको लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा ग्रुप बनेगा। और लोग बड़े उत्सुक हो के आ रहे हैं कि चलो हमको हमारे भारतीय संस्कृति को सिखाने वाला कोई है। जो भी आपको कुछ देना नहीं है, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग,
2: बस थोड़ा सा टाइम देना है
3: बस।
2: क्योंकि पेरेंट्स को है, उनको है कि हमें सिखाना है। बस वही था कि उन्हें पता नहीं था, बट इस माध्यम के थ्रू उनको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे भी एक छोटी क्लास चलती है। और बस एक घंटा दो घंटा निकालना है उनको और अपने बच्चों को लेके आना है और अपने कल्चर के साथ जोड़ना है।
1: जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें महीना में एक बार तो उतना समय भी नहीं है। आई मीन समय की बात किया जाए ना, इट्स क्वाइट बिजी। लेकिन फिर भी महीना में जो एक बार आपको आना है, और ये जो ग्रुप है उसकी जो इन्फॉर्मेशन तो हम डाल देंगे अपने पेज पे। बट जो लोग अभी देख रहे हैं स्पेशली क्रशेश के, तो ऑब्वियसली जो चेहरा आप देख रहे हो दे आर नॉट काइंड ऑफ, हम मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं पे, आपने देखा होगा। और काफी लोग हैं तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो आप जरूर मिले होंगे। और अमित इज एवरीवेयर बेसिकली, तो डेफिनेटली यू कैन अप्रोच देम एंड फाइंड द कॉन्टेक्ट। और अब मेरे ख्याल से अब यही होगा कि आपके ग्रुप तो बढ़ने वाला है। एंड बट आई थिंक जो आप काम जो काफी अच्छा और काफी बढ़िया तरह से कर रहे हो, तो हमारे पास बस दो या तीन मिनट बचा हुआ है, तो जाते
4: जाते जाते जाते तो विनेश, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनेश जी। यू आर ऑल्सो सीन एवरीवेयर विनेश जी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर, बट यू आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर पब्लिक फिगर। आई रियली रियली अप्रिशिएट कि आपने फर्स्टली यू टुक टाइम एंड गेव अस योर टाइम ऑन योर रेडियो। सो दैट्स एंड अगेन थैंक यू टू द लिसनर्स ऑफ जलसा फिजी रेडियो। सेकेंडली 4th of July इज अ डे वेन वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ श्री बागेश्वर धाम सरकार, एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फंक्शन ऑन 4th of July एट 3:30 PM। सो प्लीज प्लीज कम, आप आइए और प्लीज लेट योर चिल्ड्रन पार्टिसिपेट, लेट देम एंजॉय, लेट देम बी पार्ट ऑफ समथिंग दैट इज अ बिग न्यू बिगनिंग इन क्राइस्ट चर्च।
2: थैंक यू सो मच। बस मैं भी यही कहना चाहूंगी कि 4th of July को अपने बच्चों को लेके आए ताकि वो भी देखें और हमारे ये छोटे ग्रुप के साथ जुड़े और उसको और बड़ा बनाएं।
1: जी हाँ। और एक क्वेश्चन आपसे वही होगा कि आई एम गेसिंग फ्रॉम इंडिया।
2: यस
1: जी हाँ। कहाँ, किस पार्ट से?
2: मैं नॉर्थ साइड से हूँ, उत्तराखंड से।
1: जी ओके, मोस्ट लाइकली हमारे भी जो लोग आए थे ज्यादा करके उधर कहीं से आए थे। हम गए तो नहीं है बट मोस्ट लाइकली हम उधर कहीं से होंगे। तो विनोद जी आप बताइए, आप भी भारत के होंगे?
3: जी मैं पिछले 25 सालों से दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। और शुरू से ही मैं हनुमान जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और ये बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस ग्रुप के साथ जुड़ने का मौका मिला। जो कुछ हम जानते हैं वो बच्चों को हम दे पाए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। और खासकर हम अपने देश से कम 7 समंदर पार ही बैठे हैं, यानी ये दुनिया का आखिरी कोना समझ लीजिए। यहाँ पर भी अगर हम अपने अपना जो कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है, उसको हम आगे बढ़ाएं और बच्चों में दें, ताकि ये अब हमारा समय जा रहा है, उनका समय आ रहा है, तो वो इसको आगे बढ़ाएं।
1: जी हाँ, थैंक यू सो मच। हमारे पास जो समय खत्म हो चुका है, तो थैंक यू सो मच। हम शुक्रिया करना चाहेंगे विकास ने, जो लोटस नाम के नाम से जानी जाती है, अश्विनी महाराज जी, और साथ साथ में अमित, बलजिंदर और विनोद और श्वेता, आप सभी को हम शुक्रिया करने और खास करके बच्चों के लिए आने के लिए, वो लोग आए हैं देखने में।

0: एक बात और कहनी थी कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी साथ में लेके आए बच्चे ताकि वो भी एंजॉय करें.
1: जी हाँ,
0: जी हाँ,
2: नो डेफिनेटली. तो बच्चों से आग्रह है कि अगर आप आए अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स को आप साथ लाए. ज्यादा करके हम पेरेंट्स को बोलते अपने बच्चों को लाए, लेकिन हम यहाँ बच्चों को